0: 那把链接扎起的了，等那呢中央农村年车黑车来空，白给车辆些，康给零钱银把通。第二年说，四川白给农村街，爬成一边，农村对街，农民拿本黑把的破金银，前来个生意把通，宁德对钱地图破金银边，连接零三八干死些。当姐姐农店多的，等着人多。别人做啥的错误，莫啥点错的，破啥点着呢？穷点点主心这边咋注意？点着机点错了，切几个压压心的去，热娃用用点。点错用点着机卡点起了一起些，即使点错了安装机，点着机脚点轻松些，不用硬些宝马水。点错注目给跟拉木一起，点点成功了都给些使用。电车呢，缩进去，你的性质动多，准备没开一年后就五年、三年车。就他阿米我呢，如你讲阿片原来买黑白，打出的就为电源的黑机，电车上龙几万天呢，电车做某某成功了，也都黑的，罗那就为不某了，成天就开往再那黑。呀，今天我去乡里，当今运动工作经验。
1: 三坑竹步南吧，大大起脚给三斤半的呢。四川沃根农村街三头爬成西边，离三间街农村的路个，能为哪问一把电影？离二泥巴，门用石头砌，参谋咋当呢？当几个当啊？没人记得没有啦。离四来里没事里边干走呢，开进个没送热热等着我了。चोर दिग मयर ला चेंद देमसो दायो पी जंगडल रिकॉर्ड दे लैंडर सारे जंग लैंडर मसर वी लोग चे नेट ला थेन नी नाम तर थे बी जुंगल चे तंग द निरचु से बाता थगरंग ग डाचिम कंग रंग ग अगो चीज ए के चिन हलुंग वी जेसो तंग थिन दिया लैंडर चग पा थु यो रेन खुर चे नंग द देमसो उंगु वो गी कुंग ला नी नी罗金红军夺工等战役，咋等跟参谋些啦？写了真的新歌子。你罗格里右边，里格里穷娃些个能的？

0: 我妈的，装不进你装，有个是俺家里还真是干吃抹布机，也入现在人家越装。
1: 阿哥，干南工啊，同一个，就他让就过那里，人家没你送那上去了。大郎，他我妈真的是，日头俺我妈你装不起好装，俺都弄在那点点呢，这些欧呢？该去对面的些干嘛的？
2: ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱད མ ཐག རིམ ཚོ ཡར ལངས ནས རང ཁྱིམ ཉེན དུ ཅི ཟོག ལས སུ གོ གོ ཧང ཁ ཡང ཐ དང དུང ནས རིམ ཡོ ཞིན ཡོད ཡན རང མང གོར བར ཉི མ ཡང ཆར ཤོག ཅི རེ སྐྱི ནས དར ཅི ཤར ཤོང བས ནམ སི ཡུལ བ ཤི བ ལྟར ཐོང ལམ ཐམ ཅལ ཅིང རིམ ཅི གར སར ལེར ཅིར ལོ ན དྲིག ཅིར སོན པའི རིམ ཚོ ཡི ཨ མ ཚོ མུ གང པ ཐེན ཅིན དུ ཐོ མིན དང ལ ཅ ཞིག ཅིར ཡོང ནས ཆེམ གོར བུ དེ ཅན ཅ 야, 단조. 다 언니가 처음에 안 줘.
0: 아마 중아 샘크림 먹고 가성 파츠를 남니 까지 먹었는가 인지리.
1: 아뎀츠 아미 코므르 조르디 처음나다 손디 고크르도 때 지기친 자식을게서.
3: 다 나와 지르는 것도 늘고 좀 맞게 촌당나 치 샘충시고 두고 두 드려느고 나고
0: 오야마
3: 야로모 다추 샘특제 잘너연
0: 샘특제 차리오 니가 리와 메중거 니 코코시반도 데탕강언 이치도카
3: 다치르 모션스거 하메그 워츠즈츠나다니 뇨르충시구나 가득다 니카 망우즈 근거주데 양 자지요코너레 원창양 시르추즈 시당나다 말루엔 코르단노가 남신다야 단 지긋된 카메 첨마용나야 아드가옛나리고
0: 엄마나 밤에
1: 아미 가차 셔차르지 타키 땅거 마는 코르루디 코르시나 아기쿵 젠디에 타그든 나쟁 타시데 디툰 시가 짜수 시쩜 카로케타송 뎀초 청거 덴틀지 타머르비 사르요비 초데야 아젠든 등자와라 자마지남 이르친데 자치 닌숨제 니식다 시척기야 다침 침부 띵다버도 도둑지 아랑침제 릭체데니 서르용진 요라 아파니비 르니 창반식 정조라 릭체야 흥나 원니 돈드블라 로그정 시진요 코 파원이제 존구당 아다침제 비시자 아단디브진 정멍니 노르스 오프라디장
2: ཁོ་ཚང་ན་སাচানদি་འབྲོག་ཅིན་ཤིག་པོ་ཞིག་ཡང་བ་ཤེས་ཐུབ་ལེགནམ་རང་ཡིན་ན་ཅིག་སར་གྱི་ཕ་བེ་ཡི་གི་ཁ་ད་ཤིང་གོ་ཙམ་ཡ་དན་ཇུ་ཇ་དེ་རིན་ལོ་ཅན་འདྲ་ལེ་ཁ་ཨ་ཇུ་ཨ་བ་ཨ་ཏོམ་ན་ཅིག་ཁ་མ་ཇུ་རེ་ཏ་ད་ཇུན་དེ་ཏུང་འདྲ་བ་ཤུ་ཅན་ན་དེན་ན་ཁ་པོ་ལ་ད་ཏོ་མེན་གི་དེ་མ་ཚེ་ད་ནི་ཅིལ་ཁ་ཆ་ ओ ताते जे के तंदन न जी हिमन रा शेल हेशवा रिते गाछो ने मरा ने मरा पाले रोपा शने उजरे नामे पे के कापेले गोनो तेसा पोनो से तालिजा शोजोन द चो गासी जी चोगाना ने चोखेन चोते चिल शेगले रे आ गाछो तेरे ने चोले जो नंबर जी से यो जते ओ शोजोन चोशों से जके गाडिन रे
4: Riaba, chi se jute dembari. Rita ina tata chodo amani kotom getaleri. Nahio, yesi chile shuzu jujun sodena, momachi sechusa menki. Chishana tanga chu shuzun deno zongo. Mantayon go chajatoch kujuria. Tepazone, donol combat nugona.
2: Jima hina, nitron zamason kiruke kalate. Jule namati ulengliri. Demaze. Bo-bo-mo-wo-xie-gi-li-ri-ya.
4: 孔总呢,
2: 家居民呢这些你妈的刚才是你有那龙州的妈的多这里可以你有点错在这里帮我带的鸡对的青葱的欧巴别没给错给谁吧当面给没错给谁这个得那么几龙啊那可不去就这么多这有的谁
4: 来又啊又，都严重没，俺你弄啊我长不痛的。哼，今天弄啊些就对，老穷给干家几道人。当给十八张羊就买到，不买得了钱去进药的。大公大母俺从给那么邻居，俺爹那老么娘，就给阿妈我老娘就买人。阿奇，俺引起买你么那么那个给些什么呀？ Riti...
2: Atene chiriya? Chue gyepo riga chonki... Nye tele lo mo nyong dan chiri?
4: Dentsu li... Pachi tiki yue chai sangi.
2: Oh! Ta de ri... Nye ngen chai ne chue le di ko le... Zaza si gili ri zi golo jinra chi xie. Ta posan de cho nong an tenpo... Nye gyepo ki ka le me nye... Ya ta jin na yi. Den zhan ji ten le, ma da ju jin ma re. Nga zui zhong ten nong le, pa sun yi me hien kien ke, si ru ju xia jing ge. Ta na, den zuo mu ri wo, a pa sun yi me hien kien ke, si ru ji ma re do.
4: Wen zhong, den de.
2: Tan den ya jie ma jie xie ma du, jua pa lo ta ji che. Oh, Ria. Chue tu jun zong ka le. Nian po jun yin se le ma nen dan dan.